जिस नो दयालु होए मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की।

पलो पयो प्रेत कया मनिया सुख सहज इस कर का जानिया हो बंदे से खिदमत दार ओ अवनासी अगम्य पार ले पखा प्रे चल।

पहला मार्ग, पहला रास्ता, पहली जुगत। सतगुरु कृपा करते ने साहब धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कहते ने प्यारे आ, कदी मच्छी नू देख ले, उदा पानी नाल किन्ना प्यार है, उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल, एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती, दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल, इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। साहिब कहिंदे ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातरक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाती बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है मेरे पातशाह ते, स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां। बेअंत है मेरा पातशाह, बेअंत है मेरा मालिक, बेअंत है रहमतां दा साईं, कितने गुण गायन करन। हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रसना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रसना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

में जे भाई सत्ता समुद्रां दे पानी दी स्याही बना ले जावे। कलम करो बन रहा है सारी जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमा बना लिया जावे।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत दयारे, ए मेरे मालका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे।

जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तो जीवे फिर ना खाई महाकाल कोट जन्म भरम

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए। मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना कर दी हुई उसके मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया। मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने।

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो कोई तीन कोई दस कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

हीरे लालां तो महंगे श्वास तू मिट्टी विच रोल के चला जावें जीवन दी बाजी हार के जेड़े जांदे हन उन्हां नूं फिर कदे अवसर मिलिया नहीं हजूर दा बचन है के जीवन दे नौ हिस्से तेरे लिए हन भाई हस खेड अपने बच्चियां विच सुख मान आनंद मान अपने कार विहार कर जीवन दे नौ हिस्से तेरे अपने हन पर निरंकार ने एक गल दा चेता कराया जीवनू के ए मनुख दसवां हिस्सा श्वासां दा तू गुरु दे लेखे लावी उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे लेखे लावी क्योंकि असी अपनी किरत कमाई दा दसवंध भी गुरु दे लेखे लाउणा है अपने श्वासां दा दसवंध भी गुरु दे लेखे लाउणा है अपनी कमाई विच्चों दसवंध भले पासे लावांगे ए साडा लोक सवारेगा अपने श्वासां दा दसवंध गुरु दे लेखे लावांगे ए साडा परलोक सवार देवेगा इसे लई हजूर बख्शिश कर रहे हैं ए मनुख रंग माण लै ओ रब दे रंग माण लै ए जीवन तेरा पल पल करके शिन शिन करके घटदा जा रहा है 24,000

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे

साहिबजादियां दे इस महान बलिदान नूं देख के सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी महिमा

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई प्राणा जी बैठे, दर्शन करन चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई। सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले। सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया। साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा ले। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने, वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक की रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे को नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। बादशाह मैनू तुसी आग्या दे, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे, कह लगे भाई पराणा, जिदन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना कर फिक्र कितों पै गई, तू फना कर ताकत कितों आ गई तेरे। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहिब हस के कहिंदे ने, भाई पराणा, जे मेरे चरणा चो तबाह करन दीआं ताकतां तेरे कोल आईआं ने, ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवा मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए, ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रज़ा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढ़े ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढ़े ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी, सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालिक की बख्शिश की हुई, धन गुरु अर्जन साहब की बख्शिश की, सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं की, सी नहीं उचारी। वाहगुरु वाहगुरु जपदिया होया बेसुरती तक तो पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जाए ना, तो फिर हाए नहीं मुंहों निकलती, शुक्र मुंहों निकलता है। वाहे

बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच का

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

एक बहुत कमाल की गल कर दी। सप डंग मार देंगे कहते ने लोग, सप तो बचन की कोशिश करती कि सप का डंगया होया मनुख बच नहीं सकता, पर फरमाते नहीं

मुस्कराया। हैरान रह गई दौलतां दाई, मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिखत बोलो श्री वधाई दीती से। बार आई कोठरी विचों, वधाई दीती, मैता जी वधायों,

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा